हमें दादो समुद्र का किसी अकल से इसमें का सा किसी या आज नगंगार बेचारा है।